ब्रह्म जन जन में बाल ब्रह्म के अपने कश परम सहस्यान पल न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत जन का निर्मर रेता पेट संग राम गुण रवे पाल रोगी दर गह गवे सुन कर बचन कर आगा ने मस दो गातिया ने पूरा कर रखा जा का मंत्र अमर दृष्टि पे क्या हो शांता गुण बिंद क्यों तो नहीं पाए नानक जिस भाव है जिसले मिलाए जे वाय गुस्त नेक सत परख पूर्ण विवेका काहू पूर्ण पहुंचित प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाण निरहा निर्वैर सुदाय ताक कीमत कर न पाए अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर सभाव जन कोय अमृत पीवे अमृत होय उस पर कान ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण दास आठ पर हर का नाम।

भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी।

Coi बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास उई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक।

शब्द जगत जलंदा राख लै अपनी कृपा तार गायन करन जा रहे हाँ। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 853 दे विच दर्ज है। ये शब्द गुरु अमरदास जी ने दे द्वारा उच्चारण किया गया सी। आओ गायन करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: कुछ एक ही फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो ऐसी बच्ची मननप्रीत कौर सेखों बड़े प्यार दे नाल शब्द श्रवण करवाया है, गुरु बख्शिश करे, चढ़दी कला बख्शिश करन। तो हुण जो नैक्सट बच्चा है सतनाम कौर, उस स्टेज ते आ जावे। और साथ संगत असी थोड़ी जी ये तब्दीली इस ग्रुप च एक बच्चा छोट सतनाम कौर होया। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी साध संगत खेमा का जाचक हाँ। सतनाम कौर जी बच्ची ने, सतनाम कौर बच्ची जी ने आप जी के सन्मुख शब्द पढ़िया है, गुरु बख्शिश करे, चढ़दी कला बख्शिश करे। हूँ आप जी ने बच्चा बीरजोत सिंह शब्द शर्म करवाएगा। इस तुम बाद चो साध संगत मज्जा जी साहब नोट कर लैन, एक बच्चा है ऐशवीर सिंह, उस ऐड कर रहे हैं, कुछ कारण करके उन्होंने जल्दी जाना है। ऐशवीर सिंह 14-16 के ग्रुप के बच्चा है, आप जी पास शीट आई हुई है बच्चे की ऐशवीर सिंह की। बीरजोत तो बाद वो बच्चा आप जी

गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी ने गुरु नानक देव जी का शब्द राग पैरो तीन ताल विच उच्चारण किया हुआ शब्द क्या कही है किच कही ना जाए गा के सुना जा रही। हाँ, यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 1125 अंग ते विराजमान है। ये राग दा गौन दा समा अमृत वेला है। ये राग दी वादी ता है ते संवादी रे है। इस शब्द विच गुरु साहिब जी दसदे हन वाहेगुरु जी की महिमा बहुत वड्डी है जिसनू बयान नहीं किया जा सकता। बयाना सरवण करो जी।

0: है क्या जी कक?
1: नाम अनहद कौर, नाम बोल रहा किसी का। नेक्स्ट।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जी, मेरा नाम अनहद कौर है और आज मैं आप जी ने गुरु अर्जन देव जी का शब्द लोभ भिख्या भिखै लागे सरवण करारी हाँ, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 408 विच सुशोभित है। यह शब्द राग आसा दे विच है, जिसका थाट बलावल है और इसका वादी सुर माँ और संवादी सुर सा है। यह शब्द की जाति औरव संपूर्ण है और इसका गायन करने का समय रात का अंतम पैर और शाम का संधि प्रकाश है। अज मैं थोनों यह शब्द वक् वक् तालों में सरवण करा रही हाँ। इसी स्थाई और पहला अंतरा जपताल 10 मात्रा, दूजा अंतरा एक ताल 12 मात्रा, तीजा अंतरा फिरोदस्त 14 मात्रा और चौथा अंतरा तीन ताल 16 मात्रा में है जी। इस शब्द में गुरु जी सानू प्रेरणा देंदे हैं कि संसार दिया नाशवंत वस्तुआ नाल मोह करन दी बजाय नाम सिमरन करिए, गुरबाणी अनुसार जीवन बतीत करिए और सच्चे मार्ग ते चल के अपना जीवन सफल बनाइए। प्यार नाल सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी का सारंग राग विच पड़ताल रूप विच उचारण कीता शब्द शुभ बचन बोल गुण अमोल सारंग राग विच पड़ताल रूप विच ही गा के सुनाउण जा रही हाँ। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1229 ते विराजमान है। गुरु साहिब इस शब्द विच एक जीव रूप स्त्री नूं संबोधित करदिया होया बचन करदिया हन कि परमात्मा दे अमोलक गुण शुभ बचन हन जो जीव रूप स्त्री प्रभु दे चरणा विच टिकाणा कर लैंदी है, आत्मक आनंद प्राप्त कर लैंदी है। राग सारंग विच दोनों निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। यह राग औड़व औड़व जाति का राग है। राग सारंग विच गा अते धा सुर वर्जित हैं। यह राग द गायन समा दिन का तीजा पै है। राग सारंग दा वादी सुरे अते संवादी सुपा है। इस शब्द मैं आप जी नूं चार वखरियां तालां विच गा के सुनाउण जा रही हाँ। अस्थाई चार ताल विच होवेगी। पहला अंतरा सूल ताल विच होवेगा, दूसरा अंतरा रूपक, तीन ताल विच होवेगा। प्यार नाल सरवन करो जी।

चीनी करना ठीक है। कोई नहीं, मैं एक शब्द कर लूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जीओ धनवादी हाँ। भाई साहब भाई गुरजीत सिंह दे ते खासकर जिन्हें भी कीर्तन कॉम्पीटिशन्स करवा रहे हैं, सानू याद है असी शुरू शुरू दे विच जद कीर्तन कॉम्पीटिशन शुरू होया सीगा, अमरजीत सिंह चावला, कुलबीर सिंह मल्होत्रा, एमपी सिंह बग्गा जी होर जिन्हें भी वीर हाले तक सेवा करा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। सेवा च हाजिर है शब्द कबीर जी का जो कि पैरो राग दे विच नाल तीन ताल। उस तो अलावा कोशिश मेरी ये है कि आप जी की सेवा दे विच एक गुलदस्ता पेश किया जाए जिदे विच अठ रागा का समूह है, सो आप जी सरवण करना जियो। आस है मेरे पर हाथ सिर ते रखोगे तो इस तरह कीर्तन की दात बख्शते रहना।

दुखी सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जाब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आकरख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हो, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कृपा हने अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत, महान देव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तजकीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूँ फूलरा जाह वह बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, आब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवती उत्पाता, सकल मलेश करोरण काता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न ऐ है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि हर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह

गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी नूं श्री गुरु रामदास जी का सारंग राग विच पड़ताल रूप विच उच्चारण किया होया शब्द जप मन जगना जगती सरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात राग सारंग विच पड़ताल रूप विच ही गा के सुना रही हाँ। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1200 ते विराजमान है। इस शब्द विच गुरु रामदास जी कहिंदे ने, जो परमात्मा सारे जग का मालिक है, हे मना उस जगन्नाथ नूं जप्या कर। जदों जपेगा प्रीत लगी है ते मैनूं तां हर वेले दिन रात उसे दा ही आसरा है। राग सारंग दा गायन समा दिन दा तीजा पैर है। राग सारंग विच दोनों निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। राग सारंग दा वादी सुर रे है अते संवादी सुर पा है। राग सारंग औड़व औड़व जाति दा राग है। प्यार नाल सेवन करो जी।

ऐसा ऐ शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने प्रतवार मुख बिंद तो उच्चारण अते बख्शा है। ऐ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अर्थ अंग 820 विच है। ऐ शब्द दा पहला लाइन प्रभ जी तुम्हारे प्राण दारे है। ऐ शब्द राग बिलावल विच है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब सात संगत एसी बच्चा सुखराज सिंह, हूँ आओ प्रभलीन कौर पासों आप शब्द श्रवण करिए। बच्ची प्रभलीन कौर उस स्टेज पर आ जाए, उस तो बाद चो एक ग्रुप जो है 14 to 16 वाला ग्रुप वो खत्म हो जाएगा, पर इस तो बाद एक बच्चा होर साढ़े पास जो रजिस्टर्ड होया है वो है बच्ची सरगुण कौर, 16 to 18 एज ग्रुप की बच्ची है। जज साहबान नोट कर लैन, वो अखीरला उस इंडिविजुअल दे विच अखीरली परफॉर्मेंस होएगी। हुण बच्ची प्रभलीन कौर आप जी नूं शब्द गुरबाणी राही निहाल करेगी। बच्ची प्रभलीन कौर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं आप जी ने श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी का सारे ग्राग विच पड़ताल रूप विच उच्चारण किया होया शब्द शुभ वचन बोल गुण अमोल सारे ग्राग विच पड़ताल रूप विच गा के सुना रही हाँ। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1229 ते विराजमान है। गुरु साहिब ये शब्द विच एक जीव रूप स्त्री नू संबोधन करिया होया बचन करते हैं कि परमात्मा दे अमोल ते गुण शुभ बचन हैं। इन्हां दे अचारण करिया कर वकारा दी दासी हो चुकी है जीव रूप स्त्री विचार के देख। गुरु दी शब्द नू त्या ते प्रभु दी चरणा विच टिकाना प्राप्त कर। जो जीव रूप स्त्री प्रभु दे चरणा विच टिकाना प्राप्त कर लेंगी है ओ वाहिगुरु जी विच जुड़ के बड़े आत्मक आनंद मानती है। राग सारग विच दोनों निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। यह औरत और जती दा राग है, इस विच गा अते दा सुर विवर्जित हैं। राग सारग दा गायन समय दे नतीजा पैर है, भाव के दोपहर तो 12 बजे तो लेके 3 बजे तक यह राग गाया जाता है। इस राग दा वादी सुर रे अते संवादी सुरपा है। प्यार ना सर्वन करो जी।

0: सम्मान योग गुरु प्यारी साथ संगत आओ रसना नु पवित्र करिए गज की आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बेनती की से गज की आखिए वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: एक खिंडिया हुई मनोबिरतियां एकाग्र करने वास्ते मैं लगता गुरु पातशाह ने सानू यह बख्शिश की है। साडा मन इधर उधर खिंडिया हो एकदम आण के गुरु साहब के चरणों के नाल जुड़ जाता है। सब तो पहला जिन्हें भी पार्टिसपेंट ने आज कीर्तन किया है कंपीटिशन दे विच पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने, देखो कीर्तन की जजमेंट की करनी होंगी है, पर सिर्फ तो सिर्फ बच्चों नूं बढ़ावा देण वास्ते बच्चों नूं उत्साहित करन वास्ते इनकरेज करन वास्ते बच्चों नूं ये सारे उपराले किए जाते हैं। तो सच जाने बच्चे इन्ना सोहना कीर्तन कर रहे हैं कि वह कहनी कथनी तो बाहर है। प्रोफेशन जिहड़े प्रोफेशनल कीर्तनकार ने मैनूं लगता उन्हां तों वी बेहतर बच्चे कर रहे हैं, तो जे नहीं तो वह आने वाले समय के विच उन्हां ने प्रोफेशनल्स नालों भी अगे निकल जाना है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा है। जदों कोई कंपीटिशन हुंदा वो करवाउण दा इक्को एक मकसद हुंदा है, जिवें स्टडी वास्ते असीं क्रैश कोर्स शुरू करते हैं ना, थोड़े समय के बहुत ज़्यादा बच्चे नूं सीखण लई मिल जांदा है। ये कंपीटिशन बस बच्चों की तैयारी वास्ते बहुत बहुत लाहेवंद ने। यह सारी चीज़ों का मकसद यही है कि बच्चे कीर्तन के नाल अपनी विरासत दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़े रहन। सवेरे मैं वेख रहा सी मदर्स का जत्था जो है उन्होंने भी कीर्तन किया, सिर झुकदा उन्होंने सारे दे अगे उन्होंने बच्चों अगे उन्होंने पेरेंट्स अगे उन्होंने टीचर साहबान अगे जिन्होंने ये सारे उपराले करके बच्चे तैयार करके तो स्टेज पर बैठन योगे किए हैं। सच्चे पातशाह जी सारू तंदुरुस्तियाँ चढ़ती कला की दात बख्शन। तो भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी ये बस निवाज रहे हैं नाल बैठ के, ये सारे उपराले के पिछे जिहड़ा थिंक टैंक है वो भाई गुरजीत सिंह जी हैं, और जिवें असी देख रहे हैं भाई साहब भाई हीरा सिंह जी ये सारे दियाँ असीसा हैं। ये सारा कुछ तो ही हो रहा है, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का शुकराना जिन्ना कर लो उन्ना थोड़ा, जिन्ना ने सानू अपनी गोद विच बैठन दा समा सुभाग समा बख्शिश किया है। मैं ज़्यादा गल्लां ना करा, जजमेंट सवेर दे बैठे उत्थे पता नहीं हुण किवें दा की हुंदा है, पर साडा सौण दा टाइम भी है उत्थे साडा है ना, तो गूढ़ी नींद हुंदी है इस वेले, सो कोशिश करते हैं। आपां जे सारे रल के कीर्तन करांगे ना तो होर मजा आएगा, तो मैनूं पता तुसीं सारे सुरीले हो सारे कीर्तनकार हो पेरेंट्स हो बच्चे हो संगत दे विच जो भी जुड़ बैठे हो, आओ मनोबिरतियां नूं एकाग्र करिए ते शब्द गायन करिए।

जी। संतोख सरोवर बसै, अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत सांत उपजै, दुरत दुरंतर नासै, सुख सागर पायो दिंत, हर मगना हुटै, संयम सत संतोख, सील सनाहो मफुटै, सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो, जग जस तूर बजायो, गुरु रामदास कल उचरै, तै अभय अमर पद पायो, सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो, जग जस तूर बजायो, गुरु राम

0: जागत गौर बचन तरायो अविगत गोचर अपर पर मन गौर शब्द बसायो गुर रामदास काल उचरे तै जगत उदारन पायो अविगत गोचर अपर पर मन गुर शब्द बसायो गुर रामदास काल उचरे तै जगत उदारन पायो।
1: जगत

0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगे मान
0: पंचे सुख है दर्रा जान पंचा का गुर एक ध्यान तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत धरती होर पर होर तिष्टि भार तले कवन जोर एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया कीता होए किता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास
1: असंख भगत कुन ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता
0: असंख सूरमो पाकसार असंख मोन लिवलाए तार जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हरम खोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे संख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जेता कीता तेता नाव विणा वै नाही को थाओ जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओह धोए
1: मात पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग
0: पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जा।

0: हरियां कर्याणि नामे अकामे
1: चतुर चक्र जाने
2: चतुर चक्र जाने
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
2: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने
1: न
2: कर्मंग न काये जन्मंग जाये प्रसाद कथते के आछिज देसे के आपिज पेसे
0: के
2: आबिज लोकें के आदित सुकें
0: के
2: राजंग प्रभाहें के तरमंग तु जाहें
0: के
2: जतन कृति के जगतरण कृति हैं के छत्रन छत्री हैं के जगतन कृति हैं के छत्रन छत्री हैं के ब्रह्मन स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव हैं कि आप पेव हैं के रोजी रज़ा के रहीम है रिहा के कि अब गुलगुना है कि शाहन शाह है के राजक रहीम है कि कर्मं करीम है के सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है के सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है के सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वन कलीमे के परमन फहीमे के हुस्न वजू है तमामुल रजू है गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते तमीजुल तमामे रजू अल निदाने।

दे। त्रिपुगत स्वरूप है, अचिज है, छूट है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, चाचरी छंद अपंग है।

0: Sarvam karmam sarvam dharmam Prasaval shantva prasad namo narka nase sadevam prakase Pramatham pramathe sada sarva sathe Anangiya name tripangi trikame Na potra na putra na satra na mitra Nirsakan sarik hai mito amik hai
1: हमें सुल सलाम है समतुल कलाम है के कामल करीम है के राज करीम है करीमुल कमाल है के उसरल जमाल है हरीफुल शिकन है रियासल फिकन है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है के नरकम प्रनाथ है बहतुल निवास है तमाम तमीजा समतुल अजीज है अधेशुला लेखा अधेशुला पेखा है करिमुल कमाल है कजुर्रा जमाल है के अजब स्वरूप है के हम तो पबूत है के अचलम निरंग है के हम तो अपंग है हर भर या गंज हर नर प्रपंज हर नर या खंड भर नर या मंड गुण गण प्रणाम जल दल मुदाम उपमा अपार गत में तू दार जल थल महंत जिस विष में अंत आजान बाहु एक के सुदाहु खल खन के आर गुर बर अकाल अंछिज गात अधिज न बात अंटुट पनार अंडठ पार अनबरन अंत दाता महंत खल खंडन है मैं मंडन है कलकान है चर्वबान है मनमान्या है जगजान्या है सरपाचा है सरनाचा है सर्वेश्वर है जलकेश्वर है पारते पर है पूर्णा कर है अक्ता कीर्त है अमृता अमृत है अक्ता कीर्त है तरदी कृत है अक्ता कीर्त है अमृता अमृत है नरनायक है कलकायक है निपनायक है सरपायक है विपतापन है जब जापन है करता कर है हरता हर है आत्म बस है जस के जस है नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज नमो परम तंतं अतंतं स्वरूपे नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो इंद्र इंद्रे अनादं पभूते नमो आसे आसे नमो बांक बंके त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे अबू अजू अनास कास अकाल दयाल लेख पेख
2: अनाथे परमाते
1: अजोनी अमोनी अकर्मव अकर्मव अगंजे अलेखे अगंजुला नामे समस्तु निवासे
2: कुकर्मन परनासी सुकर्मन पभूते
1: करीमन कुनिंदा समस्तुल निवासी हरियम करियम करीबु रहीम स्वयं शुभम सर्वदा सर्वजूते

0: सब इनको आज संगरी
1: पूरन होए हमारी आचा तोर भजन की रे प्याचा
0: साथ न दियो जो वो चोसो तुम ते पाओ
1: सेवा से के मारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिए
0: फाते मुझे बड़ी अमरन काल का त्रास मरिए
1: हो जो सदा हमारे पचा सिरिया तू जो करियो रक्षा
0: साहिब संसार प्यारे
1: देन बांधो चन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्म पुत्र काल पाए शिव जी अवतार
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाश सगल काल का किया।

आदंते के वतारा सोई गुरु समझो हमारा शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बध कियो चीटी ते कुचर तुला सब पर कृपा दिश कर फूला एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबा कर कर तो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ तुम सब ही तेरे त्रिरालम जानत भेद भेद आलम।

0: कौनसी उपसंग्रह्यता
1: सगृषिदकाय चम्बवा जुगाश्रूप स्यम्बव
0: अवरचमरीतम करो सिकु वालसिक संगरो
1: दोर्जेते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता
0: ये शिव समय परे तिनके दुष्टक तुमरे
1: पुरख जनपद परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो पर कोई बात दिया है ताके काल दिया है
1: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला
0: ताके तात नहीं हुआ
1: वेद सिद्ध कर्म सब होई दूर छाप सके न कोई
0: एक बार भी द्वेष बारह काल फासे जाए।

0: जगन सरा पूरन सबरा
1: तिलबिक सगल दे को हरता दुष दोखियन को छे करता
0: श्री सुजब दे दियाला पूरन करा गंत स्काला
1: मन बाछत पल पावे सोई दूह न किसे व्याप्त कोई
0: स्नेह जो यास रस न पावे स्नेह मोच लचत आवे।

ब्रह्मा विष्णु अग्नि पायो नेत नेत मुख चार बतायो लोक जतरस खेल चायो बोर आप ही बीच मिलायो पूत पवे कपवान कहानी कड़ कड़ के पड़ पड़ की जानी सर्व जोत के बीच समाना सब सर्व जोत पहचाना

0: संत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई
1: खंते पाई आई है ऋतु सुहाई
0: वन त्रिन त्रिप वन मोलिया अमृत फल पाई
1: मेरे साधु सुखी उपजे लती सब शाही
0: नानक सिमरे एक नाम फिर बहुर न ताई
1: पंजे बदे महाबली का सच्चा ढोआ
0: अपने चरण जपायन विच दियो खुड़वा
1: रोग शोक सा मिट गए नित नवा नरोआ
0: दिन रहन नाम त्यायन दा फिर पाए ना मोआ
1: जिसे उपजा नानका सोई फिर होआ
0: ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇ
1: ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ
0: ਕਹਿਣ ਧਿਆਇਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਪਵਨ ਨਿਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ

0: हे रब हे सस हे करुणानिध मेरी अभय विनती सुन लीजै।
1: और न मांगत हो तुम ते कुछ चाहत हो चित में सोई कीजै।
0: शस्त्र सो अत ही रण पीतर जूझ मरो तो साथ साथ परिजै।
1: संत सहाय सदा जगमाए कृपा कर श्याम हे बर दीजै।
0: सोया दे शिवा बर मोहे हे शुभ कर्म ते कबहू ना डरो।
1: ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो।
0: पर सिख हो अपने ही मन को हे लालच हो गुण तो उचरो।
1: जब आपकी औध निधान बने अति ही रण में तब जूझ मरो।
0: सोया तन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे।
1: दे अनितना नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे।
0: ताम बनाए हे तन बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारे।
1: ज्ञाने की बढ़नी मनोहर।

0: सकल जहान
1: जहाँ का किया सब किछ होए तिसते बाहर नाही कोए।
0: करो बनंती अपने सतगुरु पाहे काज तुम्हारे दे निभाए रहाओ।
1: सत्य उजा का दरबार सगल भगत जा का नाम आधार
0: सर्व व्यापत पूरन तनी जा की शोभा कटगट बनी।
1: जिस सिमरत दुख डेरा टहे जिस सिमरत जम किछ ना कहे
0: जिस सिमरत होत सूखे हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे।

0: सास पित पाले
1: लागृहो मेरा चीत
0: आदि अंत ब्रह्म सदा सहाई तन हमारा मित्र हो
1: विलास पे साहेब के अचरज देख बढ़ाई
0: हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूरण पैज रखाई
1: विलास पे साहेब के अचरज देख बढ़ाई
0: हर सिमर सिमर आनंद

धर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत्य करो तुम सारी काम करो, लो मौजी तो ऐसी खेल हर प्या, उठी स्नान करो प्रभाते, सोए हरिया राधे बिखड़े दाओ लंगा वे मेरा सत सुख सहज सित।

मिलंत जम त्रास मिठाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई एक अरदास पाठ।

कोई न जाने तुमरा अंत उचेते, सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमते, तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता। तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े। आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्ची पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर नितनेम जी दी बाणी की अरदास उपरंत बेअंत गुरबाणी सहित गुर शब्द पढ़े गए सतगुरु जीओ। गुरबाणी गुर शब्द अभ्यास करदिया हुई बेअंत प्रकार दियाँ भुलां गलतियां दी खिमा बख्शनी। अगे तो सुध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन दी दात बख्शनी। दारा जी संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दियाँ दातां बख्शनियाँ। समूह टहलियां दी अरदास कृपा करनी सतगुरु सवेरे अमृत वेले संगतां वल्लों सवाइयां दे जाप होए। गुरबाणी पढ़द्या उचारण करद्या हुईयां भुलां गलतियां दी खिमा बख्शनी। आप जी दे हजूर आप जी दे दरकर दे सेवक परिवार वल्लों सरदार गुरनिवाद सिंह दे जन्म दी खुशी दे विच सतगुरु आप जी दे स्थानां ते कड़ाह प्रसाद दीयां देगां दी सेवा लई है सतगुरु कृपालता करनी। कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी। आपने दर आई संगत नूं गुरसिखी सिदक अमृत वेला नितनेम दीयां दातां बख्शिश करदे रहना। सतगुरु साहिब जीओ करो कृपा
ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

जब लो नहीं पाग लीलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बुडत थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो सो कहो टल गुर सेविय एहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो

परमात्मा मेरा प्यार तेरे नाल होंदा नहीं, हे मेरे सच्चे गुरु मेरा प्यार होंदा नहीं। बचपन तो तेरे नाल

प्यार दे नाल भरी हुई है। इत्थों पता चलता है कि सतगुरु जी किन्ने वैरागी और कितने परमात्मा नूं प्यार करने वाले